असे मेरा मन को कयो मासे था मन को करू रिका से मेरा मन को कामियो रिके मरे मान की सुन ले मेरा ब्रह्मवा या गगोली मले लावले ब्रह्मवा या गगोली मले लामीबा अमु इदा मल्याकु एदान रतनाय एदे गुलुवा एथुमाई हो बसाय एरोवा मे क्वासाय एहाले नरवानु एहाले नरवामाय किरुवे सिमाकावा बसागा गुरिया नकी वेटियो मनो वैलागा गुरिया नकी वेट।